0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से के जो लंका का मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जिता मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने चिप जो लंका बि पेंडो रे
0: जे जे तंगा ह गिन के का शाम बत कि छि इन रो ति मो ने ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: जे बिन जो को यो को या बो दा
3: 好有了把做金不没有委屈层面记住蓝阔了麻子有呢也不有这玉蓝不毛那样电压着鸡沙瓦鸡居居俺居居俺土可得牛津千里过地没动瓦当可得金金多了没动瓦出了多年可得没动瓦可得公个
4: 三门也往记下去，搁清不了。最近俺去，真正这送来送出去呢。罗拉店家的，也是学生的店面，罗拉下都用往下去，给你写的。店家的店面，这就可有钱，全部。

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका का मांस दे देना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जिता मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मत ताते ले गेम गने जेजो लंका बि पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के का शाम बत जि छि इन रो तिंग मो ने ला सान रो रे और रे रे
1: रे लंका क्यों तो तो हमें
2: छाया
0: बस के छना छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ
3: 好有了把做亲不没有委屈场面解决了马子有呢也不有主播那把错大家七姐先一边领亲的呢北京龙城年之里空看给龙城解决的日子领亲先解决了一把的日子安全领亲的呢
4: 俺俊英年代了右边出出端把你鸡巴把他东北把他年代有公主出出端当黑干的鸡蛋黑干了亚东黑就有别先祝林俊英对图图俺去领亲先就了